बहुजा राजन का धनुष कही तोड़ा। अरे बहु धनु ही तोरे उलरिकाई कबहू न असरी सिकी न गुसाई। मेरी पवारत बालवस बोलत तो ही न सभा धनु ही समत्री पुरानी धनु विदित सकल संसार। कौशिक सुनो बंद ये बाल कुटिल काल बस निज कुल घाल तुम हट कहु जो चाहो उबार कहीं ताप बल रोष हमारा। सूर समर करनी करही कहीं न जनाब ही आप विद्यमान रण पाये कायर करही प्रलाप। सुनी कटु वचन उठार सुधार बालक पर छोहु सूद दूद मुख करी न कोहु जो लरी का कछु अनुचित करही गुरु पितु मा तुमो तो मन भरही। बंधु का है सब सम्मत तोरे तू छल विनय करसी करु जोरे करि परितोष बोल संग्राम नाहित छार कहा उबराम। राम मात्र लगु नाम हमार परशु सहित बर नाम तुम्हार। कहु सुभाहु न कुलहि प्रसंसि कालहु डरहि न रण रघुवंशि। विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होइ जो तुमहि डराई। सुनि विदु गुण बचन रघुपति के उखरे पटल परस।